जाते सामी और कालो पुनी करारिस तुआनिंग सामी राजा मवास्तुई पुनी कुदुक पास्तु कलावान ibawi serengi nitiasa mulati nuluh kadiliki kide batari.